0: अपनी सारी चीजें ले आते हैं, तो मोदी जी संघर्ष गरीबी लेकर जाएंगे तो क्या कहेंगे जी भाइयों बहनों? इंकलाब जय जवान जय जवान जय जवान। हेलो
1: स्वागत होना तो इस तरह नहीं। ये अठारह कप चाय पीने वाले तब कहां थे जब मैं चाय बेटा करता था।